0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइटल अहिले बिहानको 8 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प स्टोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 93001

0: connect your dream, connect your future, still connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शुक्ला गंडकी चार तुलेगौड़ा वाचिन डिपार्टमेंट भवन सँगै मोबाइल 9856324493 र 9856338073।

0: ते
1: झम्प खाँदा मिनी बस्तीमा भनेर के साह्रो घुमी फेरि मतिरै पुगेछ त।

0: 哟，
1: 老油巴子。
0: 一个人。
1: 嗯
0: 哼。一滴滴滴，咱吃喝苦的日子嘛，有咱们吃成米的门嘛。
1: 啊，有咱们吃成米的门嘛，冇得了不给过。
0: हजुर
1: आ म बिना कसै कसैलाई मुश्किल छ पोखरामा म छु आज धेरै टाढा हो मेरो दिल छ पोखरामा ल म बाँच्नै पर्यो है
0: हजुर

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560 2279।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: सेक्सन 1 स्टुडियो राज्य अहिले दिउँसोको 3 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प स्टोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 9816695301
3: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
4: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
5: इट्स 3 PM
6: हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ यो हो थाहा संचार नेटवर्क समयको आवाज

0: तेल खाए सारे मिठो पकाए त ट्वाकै एक पाकेट ले पेट भरी नि के हो भना अपवाकै
1: यो हो बोनस चाउचाउ।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टेशन 1 स्टुडियो साइट
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

2082 दशा द्विग गतिविधि अर्थात 7% विश्वभर राष्ट्रीय आर्थिक गणना संचालन हुँदैछ। उद्योग

0: वरिष्ठ निसन्तान पन विशेषज्ञ डाक्टर अनु हिरा छन्।
1: हाइजेनिक ब्रान्ड प्रणाली शुक्लगण्डकी आठ सफल